साइकोलॉजी कहते हैं। एक आदमी तनाव से भर गया, सब लोग मिलकर झंडा उठाएंगे। लेबर यूनियन में ये अक्सर यही होता है, एक हिस्सा रहता है। सामूहिक मन भी होते हैं। तो सीमित दृष्टि जब तक नहीं छोड़ते, विशाल दृष्टि नहीं पकड़ में आता है। मानो आपके सामने ये छोटी सी वस्तु रखी है, एक खिलौना रखा है, आपका मन या दृष्टि उस खिलौने में फंस गया, तो आप उसके पीछे जो सूर्यास्त हो रहा है या विशाल गगन है, उससे ओझल रह जाओगे, वो नजर में नहीं आएगा। आपका पूरा ध्यान एक खिलौने में केंद्रित है। आसमान इतना बड़ा है, हजारों तारे सितारे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। नजर में क्या आ रहा है? सामने एक चश्मा, एक खिलौना, और चश्मे के ऊपर पड़ी हुई धूल। जैसे एक व्यक्ति को पीलिया लगी हो तो सब पीला पीला दिखता है। अपने आप से कोई नाराज है, मन में कोई नाराजगी हो तो लगता है सब उनके साथ नाराज हैं। जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। तो हमें सृष्टि ही दिखे, सिर्फ शरीर की सत्यता ही दिखे, दुनिया में अलग अलग लोगों के दिमाग के व्यवहार ही दिखते रहे,

प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज मा। इस लोकप्रिय प्रसारण संस्था एफएम अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवा को विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90